0: यो का ट्रेडिशनल मैंने कहे बिल्मा का ये में एवरीडे 5 AM का 6 PM तीन अली ऑल रेडी
1: होगा.
2: Say, man, old man.